और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे जो

啦啦啦啦啦啦啦，कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, अल्लाह जल जलालू। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह।

जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है. डोंट गिव योर हार्ट्स टू द दुनिया, यूज द थिंग्स ऑफ द दुनिया बट डोंट गिव हार्ट्स बिकॉज वी विल हैव टू सेपरेट फ्रॉम इट. दुनिया विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अस और वी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द दुनिया. सो मेक यूज ऑफ इट बट डोंट गिव हार्ट्स दैट वी बिकम ऑब्सेस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट वी डोंट सी हलाल हराम नथिंग. हलाल हराम सब कुछ अंदर फिर भी है मस्कल अंदर. सो यू मस्ट नॉट बिकम लाइक दैट. जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है या इबरत की जा है तमाशा नहीं है. मिले

0: क्या जमी खे हुए लोग पैवंद क्या क्या लुक एट हाउ मेनी काइंड ऑफ पीपल बिकेम अ पैच ऑफ द अर्थ टर्न टू डस्ट नथिंग लेफ्ट देयर ऑल द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ द फ्लावर्स गो टू द पार्क्स एंड यू गेट ब्लू रेड व्हाइट वायलेट ग्रीन ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स वन डे वी वेंट टू द पार्क रे And all kinds of flowers. And many of them had fallen on the ground. I said to my friends, I said, look, all these different color flowers. Now come here after some time, and when it has turned to dust, then search for the colors in the dust. Like that, somebody is white, somebody is brown, somebody is black, somebody is of different color. After we are buried and we turn to dust, where is all that beauty gone?
1: बेनिशां हो गए हर निशां कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली बेनिशां हो गए हर निशां कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली

तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया. चाइल्डहुड डेज अ पर्सन इज अनकंसर्न, यू गॉट नो वरी नो सॉरी प्लेइंग अराउंड. पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी नीड ऑफ हिज. सो फर्स्ट इज बचपन, देन पर्सन बिकेम यंग. सो नाउ से व्हेन द पर्सन बिकम्स यंग देन हिज विंग्स ग्रो, से उसके पर उगते. जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया. दैट एज ऑफ यूथ द पर्सन फॉरगेट्स.